जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता।

काश तुझे खबर होती, ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर कहां जाऊं,

भगवान का घर है हमारे सभी सुनने वालों की सेवा में। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों, आज रविवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह, शुभ दिन रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0325656560 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0302266611। रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। सभी सुनने वालों को वेलकम, स्वागत किया जा रहा है और यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS के जरिए पेश किए गए सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर और अति सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। आज रविवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है गुरमीत और मीना की आवाज में, जरूर आप सुनते ही रहना। एल्बम का नाम है भक्ति ज्ञान, उसी एल्बम में से निकालकर ये सुंदर और अति सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

और सभी सुनने वालों की सेवा में प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं। चेतना शुक्ला की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए सुंदर और सुंदर भजन आज के प्रोग्राम में बस पेश किए गए। कुमार विशु की आवाज में अभी आपने सुना, चले अब की बार विक्रम हसरा की आवाज में रेडियो SBS के जरिए ये सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है विक्रम हसरा की आवाज में।

से अवसर मिला भगवान को नदी पार कराने का। केवट विनती कर रहा है कि प्रभु कुछ देर और इस

रेडियो SBS के जरिए अनूप जलोटा जी की आवाज में सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अब की बार ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है अनुराधा पोटवल जी की आवाज में।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं। आरती भजन जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ

सुनवालू की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ुम। ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनवालू की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। आज रविवार का दिन है, 14 जून का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। अनहेल खुद मोर्ख गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है सभी सुनवालू जहां जहां पर भी रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। सभी सुनवालू जो देश विदेश में प्रोग्राम सुनते हैं उन सभी को भी वेलकम स्वागत किया जा रहा है। शुभ दिन शुभ रविवार बस पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनवालू जो हॉलैंड देश के अंदर में प्रोग्राम सुनते हैं आप सभी को भी एक शुभ दिन शुभ रविवार।

काफी देर तक तो हालफ दरी हमारा प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद कोलेगा ग्लेन रामबाली की जरिए प्रोग्राम आगे तक पेश किया जाएगी। तो आज का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। Thames Drive 237 लाइव vanuit het mooiste stad Utrecht शहर से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। लाइव vanuit het hart van Nederland, vanuit midden Nederland, ये है रेडियो SBS का प्रोग्राम, संगीत भरी स्टेशन का प्रोग्राम। चलिए यहाँ से हम आपको ले चलते हैं गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम की ओर। तो जरूर है इस प्रोग्राम को आप सुनते ही रहना, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में हर सुबह बस पेश किया जा रहा है 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक। पुरानी नगमे पेश करने से पहले सबसे पहले आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है गुड मॉर्ग गुड मॉर्निंग के साथ। चले प्रोग्राम में पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, तो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में मन्ना डे की आवाज में बस पेश किया जा रहा है।

गीता दत्त की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में किशोर कुमार की आवाज में फिल्म जहरीला इंसान, फिल्म जहरीला इंसान उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

जहरीला इंसान फिल्म का नाम, उसी फिल्म से ये खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम है जंजीर।

रेडियो SBS के जरिए फिल्म ये वादा रहा उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए फिल्म यकीन की ओर लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

गाना प्रोग्राम में पेश की गई है। लता के बाद चले द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की ओर हम आपको ले चलते हैं।

फिल्म यहूदी मुकेश जी की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा। उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले आज के प्रोग्राम में फिर से लता जी की ओर हम आप भूले चलते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश की गई, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। सुनने वालों चले प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में अब की बार एक गाना पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है उमराव जान। 1981 का फिल्म है। सुनने वालों चले प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में अब की बार एक गाना पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है उमराव जान। 1981

ये गाना आशा जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पीसीजे रेडियो एसबीएस की जरिए सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11 और बाकी हर एक इंफॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60.

सभी सुनने वालों की सेवा भी आसरो मीठे किए। गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में एक गाना है की ओर हम आपको ले चलते हैं। आपकी बार आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी और

मित्रों और सुमन कल्याण की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अगली बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं लता जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम जब

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म का नाम जब जब फूल खिले उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। तो चले अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। किशोर कुमार की आवाज में फिल्म का नाम जैसे को तैसा उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया। मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया। मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया। मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या।

काम है, सीधे साधे भोले भाले लोगों को सताना तेरा काम है, मुजरिम तेरा नाम है, तुझ पे ये इल्जाम है, सीधे साधे भोले भाले

दौड़ू बता तेरी मर्जी है क्या, जैसे को तैसा मिला कैसा मजा आया, मारू के छोड़ू तेरी टांगे तोड़ू बता तेरी।

नहीं, लातों के जो भूत होते हैं बातों से तो मानते वो नहीं, कुछ जानते वो नहीं, पहचानते वो नहीं, लातों के जो भूत होते हैं बातों से तो

जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया। मारूं कि छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी।

मर्जी है क्या? बोल, कैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं कि छोड़ू, तेरी टांगे तोड़ू, बता तेरी मर्जी है क्या? बोल, जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं कि छोड़ू, तेरी टांगे तोड़ू, बता तेरी

ऑडियंस द माइटी मुकीस के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में किशोर और सपना के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

वस्त्र बांधे पीछे गए किशोर और सपना के आवास में ये गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पीछे गए है। सुन बलो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.com.au उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। अनवर प्रोग्राम में होगा एक बड़ी ही खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में बस पेश किया जा रहा है।

अनवर की आवाज में खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मरहूम मोहम्मद रफी की ओर हम आपको लेकर आते हैं।

अबकी बार मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में आज की प्रोग्राम में ये गाना पेश किया जा रहा है। सुनवालो स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322-60-66-11। मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में अब आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम जीने की राह, 1969 का फिल्म मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा जी की आवाज में चले मिलकर अब की बार ये गाना को सुनते हैं और फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

विज्ञा जीना उषा थिरे आशा जी की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था मुकद्दर का सिकंदर। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर 24 uur per dag बराबर होता है 032-65-65-60।

ट्रॉफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुनकर और बेहद पसंद किया है। बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं। चले एक बार फिर से मोहम्मद रफी की ओर और गाना का बोल है ऐसे ना थे हम। But who more?

रेडियो SBS के जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। फिल्म डार्लिंग अदनान सामी एंड तुलसी कुमार प्रोग्राम में

चुने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और रोजाना की तरह आज भी बहुत सी सुने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो SBS का, जो सालों से आप सभी सुने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। उदित नारायण, हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम डर जा

के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरों में थे कि उदित नारायण की आवाज में गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गए। चले अब की बार शान एन महालक्ष्मी आयर की आवाज में।

बस और अनुराधा पोटवल की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। सुनवालो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी आप सुन सकते हैं। और ये प्रोग्राम सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी सुनाई देता है।

पंकज उदास और अनुराधा पोटवाल की आवाज में अभी आपने सुना। चले हम आपको ले चलते हैं फिल्म दे दनादन, मिका सिंह, डोमिनिक और

रेडियो SBS की जरिए फिल्म भूल भुलैया नंबर 2, उसी फिल्म से गाना पेश की गई डी ताली। चले प्रोग्राम में फिल्म वेलकम की ओर।

शर्मा और ऐश्वर्या के आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई दबंग फिल्म का नाम था। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये गाना क्यों हो रहा है, बार बार देखो फिल्म का नाम।

अनुराधा पोटवल के आवास में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए सोनू निगम और अनुराधा पोटवल की आवाज में। आपको पहले भी कहीं देखा है फिल्म का नाम और उसी फिल्म से ये गाना।

कोटवल की आवाज में गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में फिल्म का नाम आपको पहले भी कहीं देखा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। चले प्रोग्राम में अब की बार

Indiano World Champion Football हो रहा है और आज भी दो जबरदस्त खेल होने वाले हैं, फुटबॉल मुकाबला होने वाले हैं। अभी रात्रि में तकरीबन 7 बजे से जर्मनी और क्यूरासाओ का मुकाबला होने वाले हैं, ठीक 7 बजे हॉलैंडीज का समय, और रात्रि में 10 बजे खेल होगा नीदरलैंड और जापान का मुकाबला होने वाले हैं इस वर्ल्ड चैंपियन फुटबॉल में, यानी कि वेका फुटबॉल में। सुन वालों, यहां से हम आपको ले चलेंगे कुछ लोकल गाने की ओर, कुछ लोकल नगमे की ओर। आज की इस दोपहर का प्रोग्राम में जरूर आप सुनते ही रहना रेडियो SBS की जरिए। हम आपको ले चलेंगे एक शामी कपूर मैशअप की ओर, जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, जरूर आप सुनते ही रहना। शमी कपूर मैशअप प्रोग्राम में हमारी सभी सुनने वालों, जो ऐप किया है रेडियो SBS का।

Live vanuit het hart van Nederland, vanuit Midden-Nederland. Hollandisch सबसे खूबसूरत शहर से Utrecht शहर से ये प्रोग्राम जो ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है. Eindhoven शहर का रहने वाला खासतौर पर भाई हैंक महावीर आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और Eindhoven शहर में जरूर प्रोग्राम सुनते ही रहना.

फिल्म हम लोग उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में चले प्रोग्राम में आज की इस लोकल गाने की खास प्रोग्राम में सागर मालिक और जिया रामबरन की आवाज

सागर मलिक, सागर मलिक और जिया रामबरन की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और अभी अभी स्टूडियो की ओर तार किया है दीमन शहर से मनोज, और मनोज काफी कॉम्प्लीमेंट्स दिया है, कहा कि ये सुबह से प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं रेडियो SBS का और काफी मजा आता है। शुक्रिया, धन्यवाद आपकी तार के लिए। और खासतौर पर एंटोफ शहर से हैंक महावीर भी तार किया ऐप पर भी शुभ दिन कहा, और अभी भी तार भी किया, कुछ बातें हुए। बस भाई हैंक महावीर एक बार फिर से आपको शुक्रिया धन्यवाद कहा जा रहा है कि ऐप के साथ आपने स्टूडियो में भी तार किया है, कुछ बातें हुए हैं। शुभ दिन बस हर एक को पेश किया जा रहा है। अब की बार ये गाना फरीश बरसाती की आवाज में।

छोटी सी ये जिंदगानी फरीश बरसाती की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो की ओर तार किया सुरेन रोहतांग शहर से और खबर किया है कि हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। सुरेन आपके तार के लिए लाख लाख शुक्रिया और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में आपकी बार ये गाना की ओर सोसो ड्रामा। गाना का बोल है सोसो ड्रामा, किंग सेलेक्टा और प्रभास की

और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आज दो फुटबॉल मुकाबला होने वाले हैं। आज रात्रि में 7 बजे से जर्मनी यानी कि डॉयचलैंड और क्यूरासाओ का मुकाबला होगा, फुटबॉल मुकाबला होगा। उसके बाद रात्रि में 10 बजे नीदरलैंड और जापान का मुकाबला होने वाले है। दो जबरदस्त फुटबॉल मुकाबला आज रात्रि में। सविता सिंह किंग सेलेक्टर एंड

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किए गए मनीषा जगीसर और शशि राम खेलावन की आवाज में ये गाना भी आपने सुना, जो आज के प्रोग्राम में पेश किए गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। 8 मिनट ओवर 2:30 स्टूडियो टाइट हो चुका है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना भी आपने सुना जो आज के ये प्रोग्राम में पेश की गए है। सुनने वालों, आज और हमेशा की तरह आज भी 3 बजे से बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम पेश किया जाएगी ग्लेन रामबाली के जरिए। ग्लेन रामबाली के जरिए बैठक गाना प्रोग्राम, बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी 3 बजे से। जरूर आप सुनते ही रहना, उसमें नई नई बैठक गाना पेश किया जाएगी। खासतौर पर विशाल हीरा का नया बैठक गाना आप सुनेंगे बैठक गाना प्रोग्राम में जरूर, और जरूर आप सुनते ही रहना। और आपको मालूम है बैठक गाना मांग करना है तो जरूर ग्लेन को आप तार कीजिए, तो आपके लिए बड़ी प्यार के साथ आपके नाम के साथ भी एक बैठक गाना पेश करेंगे। तो 3 बजे से आप तार कर सकते हैं जब भी आप बैठक गाना मांग करना चाहेंगे। हेलमल खरातस यूफ खेन लित जाइन फन रेडियो SBS दर दुवे नीट आन दस इधर इन मखबेल बैठक गाना मांग करने के लिए। उसके साथ आपको भी खबर किया जा रहा है अभी प्रोग्राम में, इस लोकल गाने का खास प्रोग्राम में हम आपको सुनाने वाले हैं डीजे ला फिएस्टा एंड डीजे रिलेटिव, ये दोनों मिलकर, ये दोनों डीजे जो है टॉप डीजे जो होते हैं, एक रिमिक्स रिलीज किया है, रिकॉर्डिंग किया है, वो अभी हम आपको एक गाना के बाद सुनाने वाले हैं। तो जरूर और जरूर आप सुनते ही रहना। सुनने वालों, आपको भी खबर किया जा रहा है 21, 22 और 23 अगस्त मिलन स्विमर फेस्टिवल डेन हाग शहर में होने वाले हैं। इस साल 21, 22 और 23 अगस्त होगा द ईर्स्ट एंड द ग्रोथस्ट मिलन जो होते आए हैं मिलन सोयडा पार्क डेन हाग में। फॉर मेर इन्फो ग्राम फॉर ह्यूर और टिकट के लिए मिलन समर फेस्टिवल .nl।

कोशिश वालों है जो इस वक्त प्रोग्राम सुनते हैं तेरहान शहर के अंदर भी रेशमा लोकल गाने का खास प्रोग्राम से खूब मजा लेते हैं सुतमेर शहर में नेहा और उत्रेख शहर के अंदर में श्रीमती यानी महेश भी लोकल गाने का प्रोग्राम जो पेश किया जा रहा है उस प्रोग्राम से खूब मजा ही मजा लेते हैं। सभी को शुभ दिन जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं और सुनते ही रहना। जिस तरह से मैंने आपको खबर किया कि डीजे ला फिएस्टा, डीजे ला फिएस्टा और डीजे रिलेटिव ये दोनों मिलकर एक रिमिक्स रिलीज किया है। ये दोनों टॉप डीजे जो होते हैं डीजे ला फिएस्टा एंड डीजे रिलेटिव ये दोनों डीजे मिलकर एक रिमिक्स रिकॉर्ड किया है। तो चले मिलकर सुनते हैं और साथ ही साथ आज लोकल गाने का एक आखिरी गाना पेश किया जा रहा है।

0: ये रिमिक्स जो रिकॉर्डिंग किया है, इसी तरह से आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। और इसी तरह से आज लोकल गाने का खास प्रोग्राम में एक आखिरी गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। और खासतौर पर राम सुक्खू रोम से खासतौर पर ऐप किया है और कॉम्प्लीमेंट्स दिया है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Voel de muziek.

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में अनुराधा पोटवाल एंड कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज की ये प्रोग्राम में पेश की गए। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, कुछ मिनट और हम आपके साथ रहेंगे, उसके बाद ग्लेन की जरिए बस प्रोग्राम जरूर और जरूर आप सुनते ही रहना जो आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जाएगी। 3 बजे से बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश होगा। 2:11 मिनट वेटेड हो चुका है अनुराधा।

अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। सामने बैठे रहो ओ मेरे पिया। सुरवलू रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हमारा प्रोग्राम जो है आज रविवार 14 जून का बस खत्म समाप्त होने पर आ रहा है। चले प्रोग्राम में अब के बार कुमार सानू की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है कि ग्लेन स्टूडियो में आ गए हैं। उनके जरिए भी प्रोग्राम जरूर एक गाना के बाद सुनते ही रहना जो रेडियो SBS के जरिए पेश किया जाएगी और ठीक 3 बजे से बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम पेश होगा और बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम में कुछ नए बैठक गाना पेश होगा। खासतौर पर विशाल हीरा का नया बैठक गाना आप जरूर सुनते ही रहना बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम में। बाबू सुप्रियो एंड साधना सरगम बस इजाजत और आज्ञा दीजिए। हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से एंड होने पर आ गए हैं, खत्म होने पर आ गए हैं। मिलेंगे कल सुबह ठीक 7 बजे। मैं था आपका खिदमत गुजार अबीन और ग्लेन का प्रोग्राम जरूर आप सुन

रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। किशोर कुमार के आवाज में ये ओपनिंग नंबर हमारा हिस्सा के प्रोग्राम से। मैं हूं आपका मुजार ग्लेन, बस सुनते रहना हमारा हिस्सा के प्रोग्राम यहाँ से, ओवर योर फेवरेट बॉलीवुड रेडियो स्टेशन, द वन एंड ओनली ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS, और वो भी शहरी ट्रैक के अंदर से।

प्रीति सागर और साथ में यसुदास के वास में भी आप सुनते प्रोग्राम से। और अब की बात अमित कुमार साथ में द नाइटिंगेल लता।

लता मंगेशकर साथ में अमित कुमार के वास में भी आप सुनते लाइव फ्रॉम द सिटी यूट्रेख्ट चैनकी टेम्स ड्राइव नंबर 237 शहर यूट्रेख्ट केंद्र से ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS

DAB के जरिए हॉलैंड कैलेंडर में और साथ में ऑनलाइन के जरिए हॉलैंड कैलेंडर में और साथ में दुनिया के हर एक कोने में लोगों हमेशा सुनते हैं।

शैलेंद्र सिंह के आवाज में अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम से सुंदरैना प्रोग्राम से कमर्शियल्स न्यूज फरकेज फमासी और उसके बाद में बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर रेडियो एसबीएस।

तीन बजकर इस वक्त 3 मिनट गुजर रहा है, 3 मिनट ओवर 3। बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम सुनते रहना यहाँ से ओवर रेडियो SBS, वो भी हर रविवार को शाम में 3 से 6 बजे तक सुनते रहना लाइव के जरिए। बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम

0: की बैठक गाना प्रोग्राम से ओपनिंग नंबर, ओपनिंग नंबर अभी आप सुन रहे थे। और अब की बार सुनते रहना रामदेव, रामदेव चैत्यु के पास में।
1: अमावस आए पानी के बूंद पतंग छिपे, मीन छिपे ही छा जल पाए, भोर भये पर चोर छिपे, मोर छिपे फागुन ऋतु आए, सौ घूंघट के पट ओठ छिपे, पर चंचल नारी छिपे न छिपाए।
0: क्यों खफा है तू हमसे, फिर भी हमार जिया लागा है तुमसे। रामदेव।

कि हमार दिल लगा है तुमसे, क्यों खफा है तू हमसे। उस्ताद के उस्ताद रामदेव चैतू के पास में भी आप सुनते और अब की बात विशाल खेमई के पास में सुनते रहे ना। शैलेश शैलेश रामदीन का पसंद सुनते रहना प्रोग्राम से।

विशाल खेमई के वास में भी आप सुन रहे थे के भैया मारे नजरिया छोकरिया पे एजस्टेन के रहने वाला शैलेश रामदीन का पसंद भी आप सुन रहे थे।

ए सोना चिरैया, सोना चिरैया हम तो से पूछिला। देबा, देबा के वास में सुनते रहना।

0: ए प्रेम के शक्ति महान रे भैया। राम प्रसाद राम खिलावन के वास में भी आप सुनते विशाल विशाल हीरा के वास में।
1: तो लड़की शर्मा शर्मा शर्मा
0: के भैया भैया जब तक के लड़की तो लड़की शर्माए
1: या ताके लड़की तो लड़की
0: विशाल हीरा के वास में सुनते रहना।

0: तो जइयो कहाँ हमार गली छोर के। शर्वीन शर्वीन तेजू के पास में भी आप सुनते प्रोग्राम से बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम लाइव के जरिए ओवर रेडियो SBS। न्यू सॉन्ग जो कि रिलीज हुआ बदले ना ईमान विशाल हीरा के पास में सुनते रहे ना।
1: पर सच छिपे ना छिपा
0: के लड़की के बाद में रिलीज हुआ हमार रनिया सुंदर है ना विशाल हीरा के बाद में।

विशाल विशाल हीरा के वास में भी आप सुन रहे थे न्यू, बिल्कुल न्यू सॉन्ग जो कि रिलीज हुआ ओवर रेडियो SBS हमारे रनिया।

032-62-66-11, Studio Qatar nummer. Hou staat mee. 032-65-65-60. Hurricane voor Kelie, Lenneke. Voor mij is die Harjato. Virtue Samachar, Kelie. हर एक रेडियो के काम के लिए आप तार कीजिए, वो भी 24 घंटा लगातार, आज नहीं तो कल जरूर से आपके

के करेजवा में हाय राम परी दुखरी ना सुजल सुजल उमराव के पास में भी आप सुनते प्रोग्राम से बेस्ट लिसनिंग बॉलीवुड रेडियो स्टेशन शरी ट्रैक के अंदर से यानी कि द कमर्शियल कमर्शियल रेडियो SBS

डॉक्टर रविंदर सिंह सिंहनाथ के आवाज में भी आप सुनते हैं, हफीज खान और साथियों के आवाज में सुनते रहे ना, के जान मारे झुलनिया पत्थर की के गिरधारी स्त्रात फ्लोइटन फ्लोइटर वैद्य से हमारा ब्यूरमान राजन गिरधारी का पसंद सुनते रहे ना।

जान मारे झुलनिया पतर की के हफीज खान और साथियों के वास में भी आप सुनते गिरधारी स्रात फ्लोइटन फ्लोइटर वाइड से राजन राजन गिरधारी का पसंद तभी आप सुनते प्रोग्राम से सुनते रहना प्रोग्राम से कमर्शियल्स न्यूज पर केस इंफॉर्मेशन और उसके बाद में बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा

Inmiddels 3 minuten. 3 minuten over 4. 4 बजकर इस वक्त 3 मिनट गुजर रहा है. बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम लाइव के जरिए ओवर योर फेवरेट बॉलीवुड रेडियो स्टेशन द वन एंड ओनली रेडियो एसबीएस और ओबी शरीर ट्रैक के अंदर से.

0: रखी बुआ की हुसैन के पास में सुनते रहना।
1: क्यों मैं बूढ़ा हूँ, मेरी बीबी जवान है।
0: मैं बूढ़ा हूँ,
1: मैं
0: बुरा हूँ, मेरी बीवी जवा है। रकीब रकीब वागी तो सैन के आवाज में सुनते रहना।

0: रकीब वागी तो जैन के आवाज में अभी आप सुनते प्रोग्राम से और अब की बार सुनते रहे ना
1: मोहन मुराली बा जाए सकीरी
0: अंगत अंगत बोला सिंह के आवाज में सुनते रहे ना।

रशिका रशिका दीनदयाल के पास में अभी आप सुनते प्रोग्राम से रकेश रकेश यान करण के पास में सुनते रहना।

शिवम शिवम राजाराम के पास में अभी आप सुनते प्रोग्राम से जगदीश प्रसाद उदित राम के पास में सुनते रहना।

0: आधी रतिया गमक आए,
1: आधी रतिया गमक आए,
0: आधी रतिया गमक आए।
1: दीपक कन्हई के पास में

दियो 5 रुपया। अरे एक रोज मैं बुद्धि से बोला दियो 5 रुपया, बुद्धि ने नाराज होकर और दे दी 5 झरुचा। अरे बुद्धि ने नाराज होकर

मैया के घरवा। हाँ, एक रोज मैं बुद्धि से बोला, चलेंगे मैया के घरवा। अरे बुद्धि ने नाराज होकर चल गए अपनी नहियरवा। अरे बुद्धि ने नाराज होकर चल गए अपनी नहियरवा।

विधि करत झगड़ा। शोर्ष भवानी दीन के वास में भी आप सुनते प्रोग्राम से मालूम चाहे कि फरमाइश इश्तिहार या तो मृत्यु समाचार के लिए आप तार कीजिए अभी 24 घंटा 24 घी बुद्धि करत झगड़ा। शोर्ष भवानी दीन के वास में भी आप सुनते प्रोग्राम से मालूम चाहे कि फरमाइश इश्तिहार या तो मृत्यु समाचार के लिए आप तार कीजिए अभी 24 घंटा 24 घंटा लगातार आज नहीं तो कल।

पांच बजकर इस वक्त तीन मिनट गुजरा है, 3:09 लाइव के जरिए बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर रेडियो SBS

0: की सवरिया न तूते हिमलता हिमलता दीनदयाल के पास में अभी आप सुनते प्रोग्राम से
1: जब रेत में बोत्रो नहीं तो खाने में क्या मजा, जब गांव में छौरी नहीं अरे तो भैया जीने में क्या मजा,
0: ईशान ईशान राम नारायण के पास में।

की हो गया बेहाल रे छोरी, ताकत ताकत तोर जवनिया। ईशान राम नारायण के पास में भी आप सुनते हैं।

Ki na toro, na toro na. Anari raja bole. कविता कविता जगेसर के पास में अभी आप सुनते हैं।

0: राजू राजू शिव गुलाम के पास में
1: मोहे अब ना ही कुछ बासो हार कोठरिया में चला सजनी
0: के कोठरिया में चला सजनी
1: कोठरिया
0: राजू शिव गुलाम के पास

0: कविंद्र सिंह शिवनाथ के आवाज में।
1: उसे जुदाई तो नहीं,
0: यूट्रेख्त लाइट्स राइन से राजेश उदित का पसंद सुनते रहना।

कविंद्र सिंह शिवनाथ के पास में के तेरी सुल्फों से उत्तरेखत लाइटसराइन, उत्तरेखत लाइटसराइन से राजेश उदित का पसंद अभी आप सुनते प्रोग्राम से। एक नगारा नगारा सुनते रहना, उसकी बैठक गाना प्रोग्राम से।

बस समाप्त होने पर आया आज की बैठक गाना प्रोग्राम। यहाँ से आने वाले रविवार को शाम में सुनते रहना फिर से एक बार बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ऑफ द कमर्शियल रेडियो SBS। अभी सुनते रहना प्रोग्राम से कमर्शियल न्यूज फॉर केस एफ एम आर सी।

और उसके बाद में आज जय आंचलिक के जरिए प्रोग्राम सुनते रहना। मैं था आपका हिंदुजार ग्लेन, हमारे तरफ से आप सब सभी को एक शुभ शाम। शुभ शाम कहा जा रहा है, मिलेंगे फिर आने वाले रविवार को शाम में।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशलि क्रमणाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो allemaal, dit is uw आरजे अंशलि क्रमणाल, die u van harte welkom heet in het programma गीतों के लहर। Wilt u reageren, kan het altijd, surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel naar de studio met 030-262-6611. Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag. En dat is...

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: फिल्म सुल्तान से आपने सुना प्रोग्राम गीतों के लहर में विशाल ददलानी और बादशाह की आवाज में बेबी को बेस पसंद है। और अब आप सुनिए अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज में फिल्म रईस से जालिमा।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

फिल्म बद्री की दुल्हनिया से आपने सुना तम्मा तम्मा अगेन, और अब आप सुनिए ढाकर फिल्म दंगल से रफ्तार और प्रीतम की आवाज में।

0: मैंने कोई जादू नहीं किया, तू ही मेरे पीछे आया पिया आवाज अवैध द फिल्म मुझे कुछ कहना है। दिल्ली तेज खजोहदोर कुमार सानू एंड प्रीति अवैध द फिल्म याद है कौमत फोहत लीजिए फिया रेडियो SBS। जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले।
1: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले। जब दिल मिले तब गुल खिले। जब गुल खिले तब दिल मिले। मिले मिले मिले मिले दिल मिले।

थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। बेहतरीन गाना आपने सुना अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म मैंने दिल तुझको दिया है से। तो अब आप सुनिए फिल्म शुभ मंगल सावधान से अरिजीत सिंह की आवाज़ में राख।

जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.